ए ए या अल्लाह को बचाओ दे होता ए यं ताहोती चिंग पाहो जनो ए यहाँ ता ए ए या अनादा चिंगी तह तचनी को पाता हो चलने एल्टम नाना ए या तो दी को ए यं रे जैपनीज वनादा तो द बके या का हो जो दो मिलिटेंट मिलिंगो ए होता बे पाहो दिल जिंगे ए या कोजो ओ कमोडो वलिए 1972 या ता Tel Aviv Airport, the other day, I thought that a snark or what are a yadi the attack at the Aliadi Airport, Joe a hot a yad, hakehotit on the dane. A con a kozo o kamudo with yahege a yaha, a hot ah baham, a station at Chitin, dane, great Beirut, Lebanon. A con a other Palestinians than Nashin and Lomba than Chinkoba, the Yango, a other non in a ladane, 78 Chinkona Hande is done. A con D a ya liberation of Palestine, they know not so Sahin Dehege, a hot a ya Jedahas on the neck, a other Satanana Palestine Liberation Organization, they sne, a ado dan no a ya di has king Okamud.